आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापानी वजीर आजम ताकाइची सनाए ने अपनी पार्टी के मुंतजमीन आला को बताया है कि वो अप्रैल से

0: भी बुनियादी तौर पर अपने टैक्स पैनल में बातचीत को आगे बढ़ाएगी। बुध को होने वाले एक इजलास में वजीर आजम और दीगर जमातों के रहनुमा टैक्स कटौती पर किसी इत्तफाक राय पर नहीं पहुंच सके। इसके बजाय उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के मौकफ की फहरिस्त तरतीब दी। पार्टी के आला अहदेदारों समेत LDP के कुछ अरकान अब भी टैक्स कटौती की मुखालफत कर रहे हैं। जापान की हुकूमत ने मशरिक वुस्ता में तनाज़ात के असरात का हवाला देते हुए रवा माली साल के लिए अपनी इक्तसादी तरक्की के तखमीने में कमी कर दी है। काबीना दफ्तर ने मार्च 2027 में ख़त्म होने वाले माली साल के लिए जुमेरात को अपना ताज़ा तरीन तखमीना जारी किया। अफरात ज़र से मुताबिकत पैदा करने के बाद अब मजमू मुल्की पैदावार में तकरीबन 0.9% इजाफा मतवक्को है। ये गुज़िश्ता दिसंबर में जारी करदा तकरीबन 1.3% के पिछले तखमीने से 0.4% पॉइंट्स कम है। दफ्तर का कहना है कि खाम तेल की निस्बतन ऊंची कीमतें खुराक और खाम माल की कीमतों को बढ़ा रही हैं और मईशत पर मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। NHK को मालूम हुआ है कि जापानी हुकूमत जनूब मगरबी अफ्रीका के मुल्क नमीबिया में कमयाब मादनियात की कानकनी के एक मंसूबे में 5 बिलियन येन या तकरीबन 30.6 मिलियन डॉलर तक की सरमायाकारी करने वाली है। सरकारी हुकाम का कहना है कि जापान का बड़ा ट्रेडिंग हाउस टोयोटा सुशो इस मंसूबे के लिए एक कंपनी की क़यादत करेगा। ये सरमायाकारी हुकूमत से मुंसलिक जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ज़रिए की जाएगी। नमीबिया में कानों में डिस्प्रोसियम के बड़े ज़खायर हैं जो ताकतवर मिकनतीस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन कानों में इट्रियम भी मौजूद है जो स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होता है। जापान और नमीबिया की हुकूमतों ने फरवरी में कमयाब धातों की कानकनी में तआवुन से मुतालिक बातचीत करने पर इत्तेफाक किया था। इस तरह की मादनियात बरकी गाड़ियाँ स्मार्टफोन्स और दीगर आलात बनाने वालों के लिए नागुज़ीर हैं। जापान कमयाब मादनियात के फराहम कुनिंदगान को मतनव्व बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इनकी सबसे बड़ी पैदावार वाला मुल्क चीन बरामदी कंट्रोल्स सख्त करता जा रहा है।
1: इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 31 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे शांग्रीला चैन और वायला खवानो से सुने समाचार। दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या 35 हो गई है। इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मैग्नीट्यूड थी और 0 से 7 के जापानी पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 थी, जो उच्चतम स्तर है। इसके बाद से सैकड़ों छोटे झटके आ चुके हैं। लगभग 10,000 की आबादी वाले हिकावा नगर में 120 से अधिक मकान और अन्य इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। लगभग 20 किलोमीटर दूर काशिमा नगर के एक शॉपिंग सेंटर इओन मॉल कुमामोतो में बचाव अभियान जारी है। जोरदार धमाकों से मॉल तहस नहस हो गया है। 12 लोगों को बाहर निकाला गया है, वहीं 7 लोगों की मौत हो गई है और बाकी घायल हैं। रिटेलर इओन का कहना है कि भूकंप के लगभग 80 मिनट बाद मॉल के दक्षिणी हिस्से में विस्फोट हुआ, जिससे दूसरी मंजिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कंपनी का कहना है कि घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन उसका मानना है कि संभवतः गैस के कारण विस्फोट हुआ है। मॉल में काम करने वाली एक कर्मचारी का कहना है कि कर्मचारियों को समूहों में इमारत के अंदर जाकर कारों और घरों की चाबियां लाने की अनुमति दी गई थी। उसने बताया कि इमारत से बाहर निकलने के लगभग 2 मिनट बाद ही धमाका हुआ। उसने एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और देखा कि राख जैसी कुछ चीज उसकी ओर आ रही है। अधिकारियों के अनुसार यात्सुशिरो शहर में निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज के एक कारखाने की चिमनी गिरने से 11 लोग फंस गए थे। सभी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक 374 राहत केंद्रों में 9,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। जापान तटरक्षक बल का गश्ती जहाज इमारी मंगलवार के भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कुमामोतो प्रीफेक्चर के उकी शहर में मिसुमी बंदरगाह पर जल वितरण और अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक जहाज पर नहाने की निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। जहाज पर पावर आउटलेट भी उपलब्ध हैं, ताकि लोग अपने स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को चार्ज कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि जापान तटरक्षक बल का एक अन्य कश्ती पोत यात्सुशिरो बंदरगाह पर आत्मरक्षा बल के पानी के ट्रकों को जलापूर्ति कर रहा है। सूत्रों के अनुसार जापानी अधिकारियों ने येन को मजबूत करने के इरादे से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले येन में तेज वृद्धि देखी गई और येन कुछ समय के लिए 157 के स्तर तक पहुंच गया। जापान की मुद्रा में लगभग 5 येन का उछाल देखा गया और ये करीब 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हाल में येन लगभग 40 वर्षों के निचले स्तर पर बना हुआ था। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क पर कहा कि अमरीका का मानना है कि येन में अत्यधिक उतार चढ़ाव सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनके अनुसार येन का मूल्य बहुत कम करके आंका जा रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके एक विध्वंसक पोत ने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, जो देश का पहला है। ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब जापान अपनी रक्षा क्षमता तेजी से मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये परीक्षण जापान समयानुसार बुधवार को प्रशांत महासागर में हुआ। इस परीक्षण से ये पुष्टि हुई है कि समुद्री आत्मरक्षा बल का विध्वंसक पोत चोकाई टोमाहॉक मिसाइलें दाग सकता है। ईजिस मिसाइलों से लैस इस पोत ने मार्च तक टोमाहॉक मिसाइल का प्रक्षेपण करने की क्षमता हासिल कर ली थी। ये सितंबर के आसपास दक्षिण पश्चिमी जापान के सासेबो बंदरगाह पर लौटेगा। मंत्रालय का कहना है कि अमरीका निर्मित टोमाहॉक मिसाइलें जापान की जवाबी हमले करने की क्षमता का हिस्सा हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 1600 किलोमीटर है। मंत्रालय मार्च 2028 तक करीब 169.4 अरब येन यानी लगभग 1.04 अरब डॉलर की लागत से ऐसी करीब 400 मिसाइलें खरीदना चाहता है। मंत्रालय संभवतः ईजिस से लैस 7 अन्य जहाजों को टोमाहॉक मिसाइलों का प्रक्षेपण करने योग्य बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इस्लामिक गुट हमास गाजा पट्टी में निरस्त्रीकरण पर सहमत हो गया है। ये समझौता गाजा में अंतरिम प्रशासन की देखरेख के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस के साथ किया गया है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर बताया, आज बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और गाजा में मौजूद अन्य सभी सशस्त्र गुटों के पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। बीबीसी ने भी हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से शुक्रवार को बताया कि गुट ने गाजा में पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए बोर्ड ऑफ पीस की योजना पर सहमति व्यक्त की है और जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। खबर में ये भी कहा गया है कि इसराइल ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर हमास का निरस्त्रीकरण हो जाता है और इजरायली सेनाएं गाजा पट्टी से हट जाती हैं, तो फिलिस्तीनी क्षेत्र की शांति प्रक्रिया में बड़ी प्रगति होने की उम्मीद है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्षेत्रीय चुनावों के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्थानीय विधानसभा के लिए सोमवार को हुए मतदान के बाद हिंसा की खबरें मिली हैं। खबर के अनुसार चुनावी सुधारों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की एक कस्बे के आसपास सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई। वहां की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है क्योंकि प्रशासन ने स्थानीय इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। लेकिन रॉयटर्स ने एक प्रदर्शनकारी गुट के हवाले से बताया है कि मृतकों की संख्या 30 से अधिक है। इस बीच स्थानीय मीडिया ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया की सुरक्षा कर्मियों में से एक की मौत हो गई है। चुनावी सुधारों और स्थानीय राजनेताओं को प्राप्त विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रहे इस प्रदर्शनकारी गुट को पिछले महीने अवैध घोषित कर दिया गया था। पिछले महीने सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में भी जानमाल का नुकसान हुआ था। क्षेत्र के अन्य जिलों में अगस्त में आगे भी मतदान होगा, जिससे और झड़पें होने की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 22वें पाठ में सीखेंगे साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया और जापानी छात्र काइतो के साथ होक्काइडो में घूम रही है।
0: आज तीनों सापोरो हिमोत्सव देखने आए हैं। उनके सामने बर्फ से एक किले की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। बहुत सारे लोग ये उत्सव देखने के लिए आए हुए हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 22वें पाठ की बातचीत।
2: すごい ダム 見て、 大きいですね 初めて見ました
3: どうやって作ったんだろう
2: 綺麗ですね みんなで写真を撮りましょう
4: いいね
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: किले की हिम प्रतिमा के सामने पहुंचकर मिया ने उत्सुकता से कहा,
2: すごい!
1: अरे वाह!
2: ताम, मीते मीते!
1: ताम, देखो!
0: ताम भी शिल्पकला देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
2: ओकी देसने!
1: वाह! बड़ी है ना?
2: हजिमेते मिमास्ता!
1: पहली बार देख रही हूँ।
0: उसके बाद काइतो ने उस किले की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा,
3: どうやって作ったんだろう?
0: कैसे बनाई होगी?
1: फिर ताम ने कहा,
2: きれいですね!
1: सुंदर है ना?
2: みんなで写真を撮りましょう!
1: साथ में फोटो खींचते हैं।
0: तब मिया ने कहा,
4: いいね!
1: ठीक है।
0: सापोरो हिमोत्सव का आयोजन हर वर्ष फरवरी में होता है। इसमें बर्फ से बनी लगभग 200 प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। कुछ की ऊंचाई तो 15 मीटर तक भी होती है। इतनी बड़ी प्रतिमाएं बनाना आसान नहीं होता होगा।
1: शिल्पकार मचान बनाकर और क्रेन का इस्तेमाल करके बर्फ का ढेर लगाते हैं। उसके बाद में बर्फ को खुरच कर प्रतिमाएं तैयार करते हैं। काम पूरा करने में कई महीने लग जाते हैं और मूर्तियां होती हैं एक से बढ़कर एक।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: शशिओतोरिमाशो,
0: यानी फोटो खींचते हैं। ये वाक्य सीखकर आप किसी को साथ में कुछ करने का सुझाव दे सकते हैं।
1: इस वाक्य में
5: शशिन
1: का मतलब है फोटो और
5: शशिओतोरिमाशो
1: का अर्थ है फोटो खींचते हैं।
0: यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी को साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देते समय क्रिया के मास रूप में से
5: मस
0: हटाकर
5: माशो
0: जोड़ते हैं।
5: शशिन ओ तोरिमाशो
1: में क्रिया है
5: तोरु।
1: यहाँ इस क्रिया का अर्थ है फोटो खींचना। इसका मास रूप है
5: तोरिमास
1: और उससे बना है
5: तोरिमाशो।
0: तो वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: शशिन ओ तोरिमाशो, शशिन ओ तोरिमाशो।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक औरत अपनी सहेली को किसी दुकान में साथ चलने को कह रही है।
6: この店に入りましょう。いいですね。
0: पहले एक औरत ने कहा,
6: この店に入りましょう।
1: इस दुकान में चलते हैं।
5: この店
0: का अर्थ है ये दुकान और उसके बाद लगा है कारक नी, जो उस स्थान के बाद में लगता है जहाँ जाना है। उसके बाद आई है क्रिया
5: हाइर,
0: यानी अंदर जाना।
5: हाइर
1: का मास रूप है
5: हाइरिमास,
1: जिससे बना है
5: हाइरिमाशो।
0: जवाब में दूसरी औरत ने कहा,
2: いい ですね।
1: ठीक है।
0: ये सुझाव मानने का तरीका है। शायद आपको याद होगा
5: いい
0: का मतलब है अच्छा या ठीक।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: हाइरिमाशो। कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सापोरो का घंटा घर देखने जाना चाहते हैं, जो शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। आप अपने दोस्त से कहना चाहते हैं घंटा घर देखने चलते हैं। ये वाक्य आप जापानी भाषा में कैसे बोलेंगे?
1: घंटा घर का जापानी शब्द है
5: तोकेदाई,
1: और जाना के लिए क्रिया है
5: इकु,
1: जिसका मास रूप है
5: इकिमास।
0: तो वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए।

0: बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मियाँ की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
1: すごい。すごい।
2: का अर्थ है अरे वाह, कुछ देखकर हैरान, प्रभावित या भावुक होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: すごい।
2: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
5: いいね。トラベルガイド।
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मियाँ के साथ, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होक्काइडो के बारे में।
2: होक्काइडो जापान के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित प्रीफेक्चर है। वहाँ दूर दूर तक फैले मैदान हैं, दलदली जमीन है, खूबसूरत झीलें हैं और प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड भी।
0: इस खुले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। वहाँ की जलवायु देश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। वहाँ वर्षा ऋतु नहीं है और गर्मियों में भी मौसम सुहावना रहता है। ये भी इस प्रीफेक्चर की लोकप्रियता के कारण है।
2: होक्काइडो में फुरानो के लैवेंडर फूलों के बाग बहुत प्रसिद्ध हैं। जुलाई में वहाँ की पहाड़ियों पर दूर दूर तक लैवेंडर के बैंगनी सा कालीन बिछ जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है।
0: इसके अलावा वहाँ यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल शिरेतोको में गिलहरियाँ, लोमड़ियाँ और अन्य बहुत सारे जीव जंतु मजे से घूमते देखे जा सकते हैं, यहाँ तक कि जंगली भालू भी। और आप क्रूज लेकर व्हेल देखने भी जा सकते हैं।
2: सर्दियों में होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है। वहाँ भारी हिमपात होता है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी कारण वहाँ हिमोत्सव का और स्कीइंग जैसे सर्दियों के खेलों का आनंद लिया जा सकता है।
0: असाही कावा के असाही यामा चिड़ियाघर में आप बर्फ पर कतार से चलते पेंगुइन देख सकते हैं।
2: होक्काइडो का खाना भी लाजवाब है। जापान आने का अवसर मिले तो आप भी होक्काइडो की यात्रा जरूर कीजिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम टोक्यो वापस लौट आएंगी और एक दिलचस्प कैफे में जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 31 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे शांग्रीला चैन और वायला खवानों से सुने समाचार। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर कुमामोतो के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या 35 हो गई है। इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मैग्नीट्यूड थी और 0 से 7 के जापानी पैमाने पर

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके एक विध्वंसक पोत ने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, जो देश का पहला है। ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब जापान अपनी रक्षा क्षमता तेजी से मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण जापान समयानुसार बुधवार को प्रशांत महासागर में हुआ। इस परीक्षण से ये पुष्टि हुई है कि समुद्री आत्मरक्षा बल का विध्वंसक पोत चोकाई टोमाहॉक मिसाइलें दाग सकता है। ईजिस मिसाइलों से लैस इस पोत ने मार्च तक टोमाहॉक मिसाइल का प्रक्षेपण करने की क्षमता हासिल कर ली थी। ये सितंबर के आसपास दक्षिण पश्चिमी जापान के सासेबो बंदरगाह पर लौटेगा। मंत्रालय का कहना है कि अमरीका निर्मित टोमाहॉक मिसाइलें जापान की जवाबी हमले करने की क्षमता का हिस्सा हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 1600 किलोमीटर है। मंत्रालय मार्च 2028 तक करीब 169.4

0: चार अरब येन यानी लगभग 1.04 अरब डॉलर की लागत से ऐसी करीब 400 मिसाइलें खरीदना चाहता है। मंत्रालय संभवतः ईजिस से लैस 7 अन्य जहाजों को टोमाहॉक मिसाइलों का प्रक्षेपण करने योग्य बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इस्लामिक गुट हमास गाजा पट्टी में निरस्त्रीकरण पर सहमत हो गया है। ये समझौता गाजा में अंतरिम प्रशासन की देखरेख के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस के साथ किया गया है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर बताया, आज बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और गाजा में मौजूद अन्य सभी सशस्त्र गुटों के पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। बीबीसी ने भी हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से शुक्रवार को बताया कि गुट ने गाजा में पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए बोर्ड ऑफ पीस की योजना पर सहमति व्यक्त की है और जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। खबर में ये भी कहा गया है कि इसराइल ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर हमास का निरस्त्रीकरण हो जाता है और इजरायली सेनाएं गाजा पट्टी से हट जाती हैं, तो फिलिस्तीनी क्षेत्र की शांति प्रक्रिया में बड़ी प्रगति होने की उम्मीद है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्षेत्रीय चुनावों के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्थानीय विधानसभा के लिए सोमवार को हुए मतदान के बाद हिंसा की खबरें मिली हैं। खबर के अनुसार चुनावी सुधारों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की एक कस्बे के आसपास सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई। वहां की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है क्योंकि प्रशासन ने स्थानीय इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। लेकिन रॉयटर्स ने एक प्रदर्शनकारी गुट के हवाले से बताया है कि मृतकों की संख्या 30 से अधिक है। इस बीच स्थानीय मीडिया ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि सुरक्षा कर्मियों में से एक की मौत हो गई है। चुनावी सुधारों और स्थानीय राजनेताओं को प्राप्त विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रहे इस प्रदर्शनकारी गुट को पिछले महीने अवैध घोषित कर दिया गया था। पिछले महीने सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में भी जानमाल का नुकसान हुआ था। क्षेत्र के अन्य जिलों में अगस्त में आगे भी मतदान होगा, जिससे और झड़पें होने की आशंका बढ़ गई है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 22वें पाठ में सीखेंगे साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया और जापानी छात्र काइतो के साथ होक्काइडो में घूम रही है।
0: आज तीनों सापोरो हिमोत्सव देखने आए हैं। उनके सामने बर्फ से एक किले की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। बहुत सारे लोग ये उत्सव देखने के लिए आए हुए हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 22वें पाठ की बातचीत।
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: किले की हिम प्रतिमा के सामने पहुंचकर मिया ने उत्सुकता से कहा,
2: सुगोई।
1: अरे वाह।
2: ताम, मीते मीते।
1: ताम, देखो।

0: तांबी शिल्प कला देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
1: वाह, बड़ी है ना?
2: हजुमेते मिमाशिता,
1: पहली बार देख रही हूँ।
0: उसके बाद काइतो ने उस किले की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा,
3: दो यत्ते त्सुकत्ता दरो,
0: कैसे बनाई होगी?
1: फिर ताम ने कहा,
2: किरे देसने,
1: सुंदर है ना?
2: मिन्ना दे शशिन ओ तोरिमाशो,
1: साथ में फोटो खींचते हैं।
0: तब मिया ने कहा,
4: ई ने,
1: ठीक है।
0: सापोरो हिमोत्सव का आयोजन हर वर्ष फरवरी में होता है। इसमें बर्फ से बनी लगभग 200 प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। कुछ की ऊंचाई तो 15 मीटर तक भी होती है। इतनी बड़ी प्रतिमाएं बनाना आसान नहीं होता होगा।
1: शिल्पकार मचान बनाकर और क्रेन का इस्तेमाल करके बर्फ का ढेर लगाते हैं। उसके बाद में बर्फ को खुरच कर प्रतिमाएं तैयार करते हैं। काम पूरा करने में कई महीने लग जाते हैं और मूर्तियां होती हैं एक से बढ़कर एक।
0: आज का मुख्य वाक्य है
2: शशिन ओ तोरिमाशो,
0: यानी फोटो खींचते हैं। ये वाक्य सीखकर आप किसी को साथ में कुछ करने का सुझाव दे सकते हैं।
1: इस वाक्य में
5: शशिन
1: का मतलब है फोटो और
5: शशिन ओ तोरिमाशो
1: का अर्थ है फोटो खींचते हैं।
0: यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी को साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देते समय क्रिया के मास रूप में से
5: मस
0: हटाकर
5: माशो
0: जोड़ते हैं।
5: शशिन ओ तोरिमाशो
1: में क्रिया है
5: तोरु।
1: यहाँ इस क्रिया का अर्थ है फोटो खींचना। इसका मास रूप है
5: तोरिमास
1: और उससे बना है
5: तोरिमाशो।
0: तो वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: शशिन ओ तोरिमाशो, शशिन ओ तोरिमाशो।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक औरत अपनी सहेली को किसी दुकान में साथ चलने को कह रही है।
6: この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: पहले एक औरत ने कहा,
6: この店に入りましょう。
1: इस दुकान में चलते हैं।
5: この店
0: का अर्थ है ये दुकान और उसके बाद लगा है कारक नी, जो उस स्थान के बाद में लगता है जहाँ जाना है। उसके बाद आई है क्रिया
5: हाइर,
0: यानी अंदर जाना।
5: हाइर
1: का मास रूप है
5: हाइरिमास,
1: जिससे बना है
5: हाइरिमाशो।
0: जवाब में दूसरी औरत ने कहा,
2: ई देसने,
1: ठीक है।
0: ये सुझाव मानने का तरीका है। शायद आपको याद होगा
5: ई
0: का मतलब है अच्छा या ठीक।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सापोरो का घंटा घर देखने जाना चाहते हैं, जो शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। आप अपने दोस्त से कहना चाहते हैं घंटा घर देखने चलते हैं। ये वाक्य आप जापानी भाषा में कैसे बोलेंगे?
1: घंटा घर का जापानी शब्द है
5: तोकेदाई
1: और जाना के लिए क्रिया है
5: इकु,
1: जिसका मास रूप है
5: इकिमास।
0: तो वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए।
7: तोकेदाई नी इकिमाशो, तोकेदाई नी इकिमाशो।
0: अब मान लीजिए कि आप बहुत देर चलकर थक गए हैं और कहना चाहते हैं थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ा को जापानी भाषा में कहते हैं
5: चोट्टो।
0: आराम करना के लिए क्रिया है
5: यासुमु,
0: जिसका मास रूप है
5: यासुमिमास।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: चोट्टो यासुमिमाशो, ちょっと休みましょう。

0: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
1: いいね。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
3: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होक्काइडो के बारे में.
4: होक्काइडो जापान के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित प्रीफेक्चर है. वहां दूर दूर तक फैले मैदान हैं, दलदली जमीन है, खूबसूरत झीलें हैं और प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड भी.
3: इस खुले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं. वहाँ की जलवायु देश के अन्य क्षेत्रों से अलग है. वहाँ वर्षा ऋतु नहीं है और गर्मियों में भी मौसम सुहावना रहता है. ये भी इस प्रीफेक्चर की लोकप्रियता के कारण है.
4: होक्काइडो में फुरानो के लैवेंडर फूलों के बाग बहुत प्रसिद्ध है. जुलाई में वहाँ की पहाड़ियों पर दूर दूर तक लैवेंडर के बैंगनी सा कालीन बिछ जाता है. बहुत खूबसूरत लगता है.
3: इसके अलावा वहाँ यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल शिरेतोको में गिलहरियाँ, लोमड़ियाँ और अन्य बहुत सारे जीव जंतु मजे से घूमते देखे जा सकते हैं. यहाँ तक कि जंगली भालू भी. और आप क्रूज लेकर व्हेल देखने भी जा सकते हैं.
4: सर्दियों में होक्काइडो में बहुत ठंड पड़ती है. वहाँ भारी हिमपात होता है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है. लेकिन इसी कारण वहाँ हिमोत्सव का और स्कीइंग जैसे सर्दियों के खेलों का आनंद लिया जा सकता है.
3: असाही कावा के असाही यामा चिड़ियाघर में आप बर्फ पर कतार से चलते पेंगुइन देख सकते हैं.
4: होक्काइडो का खाना भी लाजवाब है. जापान आने का अवसर मिले तो आप भी होक्काइडो की यात्रा जरूर कीजिएगा.
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा.
4: अगले पाठ में ताम टोक्यो वापस लौट आएंगी और एक दिलचस्प कैफे में जाएंगी. तब तक के लिए सायोनारा.

0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। अब आज की बाकी खबरें। जापान की वजारत दिफा का कहना है कि इसके एक तबाहकुन बहरी जहाज ने मुल्क में पहली बार टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के लाइव टेस्ट का तजर्बा किया है। ये संगे मील एक ऐसे वक्त में उबूर हुआ है जब टोक्यो अपनी दिफाई सलाहियतों को तेजी से मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वजारत ने कहा कि ये तजर्बा जापान के वक्त के मुताबिक बुध को बहरुल काहिल में किया गया, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि बहरी सेल्फ डिफेंस फोर्स के तबाहकुन बहरी जहाज चोकाई से टोमाहॉक मिसाइल दागा जा सकता है। एजिस से लैस जहाज ने मार्च तक टोमाहॉक लॉन्चिंग की सलाहियत हासिल कर ली थी। इसे सितंबर के आसपास जुनूब मगरबी जापान में सासेबो की बंदरगाह पर वापस जाना है। वजारत का कहना है कि अमरीकी साख्ता टोमाहॉक जापान की जवाबी हमले की सलाहियतों का हिस्सा है। इन मिसाइलों की रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर है। वजारत मार्च 2028 तक ऐसे 400 तक मिसाइल तकरीबन 169.4 बिलियन येन या लगभग 1.04 बिलियन डॉलर में खरीदने का इरादा रखती है। वजारत के साथ दीगर एजिस से लैस बहरी जहाज़ों को भी टोमाहॉक दागने की सलाहियत का हामिल बनाए जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा की पट्टी में इस्लामी ग्रुप हमास ने गैर मुसल्ला होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये मुआहदा बोर्ड ऑफ पीस के साथ किया गया, जो गजा में अबूरी इंतजामिया की निगरानी के लिए कायम शुदा बैन अल-अक़वामी तंजीम है। ट्रंप ने जुमेरात को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह ग्रुपों को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के लिए एक तारीखी मुआहदा किया है। बरतानवी पब्लिक ब्रॉडकास्टर BBC ने भी जुमे को खबर दी है कि हमास के एक सीनियर एहलकार की जानिब से बताया गया है कि इस ग्रुप ने गजा में मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने के बोर्ड ऑफ पीस के मंसूबे से इत्तेफाक किया है और ये कि इसका एक बाज़ाब्ता बयान जल्द ही जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इसराइल ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। अगर हमास गैर मुसल्लह हो जाए और इसराइली अफवाज इस पट्टी से वापस चली जाएं, तो फ़लस्तीनी इलाकों के अमन अमल में बड़ी पेशरफ्त मतवक्को है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स का कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इलाकाई इंतखाबात के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक झड़पें मकामी कानून साज असम्बली के लिए पीर को मुनक़िदा वोटिंग के बाद हुईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबी असलाहत का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन की एक कस्बे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़प हुई। वहाँ की सूरत हाल की तफसीलात अभी तक नामालूम हैं, क्योंकि हुक्काम ने मकामी इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी है, लेकिन रॉयटर्स ने एक एहतजाजी ग्रुप का हवाला देते हुए बताया कि इस बार हलाकतों की तादाद 30 से ज़्यादा है। दरियसना मकामी मीडिया ने सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों का एक रुकन हलाक हो गया। इंतखाबी असलाहत और मकामी सियासतदानों की मराहत के खात्मे का मुतालबा करने वाले इस एहतजाजी ग्रुप को गुज़िश्ता माह गैरकानूनी तंजीम करार दिया गया था। गुज़िश्ता माह भी इस ग्रुप की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प जानलेवा साबित हुई थी। खित्ते के दीगर अजला में अगस्त में पोलिंग के मजीद मराहल होने वाले हैं, जिससे मजीद झड़पों के खदशात बढ़ रहे हैं।
1: आखिर में आम खबरों का खुलासा। कुमामोतो में जलजिले के बाद हलाकतों की तादाद 35 हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक जापानी हुकाम ने येन को सहारा देने के लिए ज़रे मुबादला मंडी में मदाखलत की है, और इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 31 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे शांग्रीला चैन और वायला खवानो से सुने समाचार। दक्षिण पश्चिमी प्रिफेक्चर कुमामोतो के अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या 35 हो गई है। इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मैग्नीट्यूड थी और 0 से 7 के जापानी पैमाने पर इसकी तीव्रता 7 थी, जो उच्चतम स्तर है। इसके बाद से सैकड़ों छोटे झटके आ चुके हैं। लगभग 10,000 की आबादी वाले हिकावा नगर में 120 से अधिक मकान और अन्य इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। लगभग 20 किलोमीटर दूर काशिमा नगर के एक शॉपिंग सेंटर इओन मॉल कुमामोतो में बचाव अभियान जारी है। जोरदार धमाकों से मॉल तहस नहस हो गया है। 12 लोगों को बाहर निकाला गया है, वहीं 7 लोगों की मौत हो गई है और बाकी घायल हैं। रिटेलर इओन का कहना है कि भूकंप के लगभग 80 मिनट बाद मॉल के दक्षिणी हिस्से में विस्फोट हुआ, जिससे दूसरी मंजिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कंपनी का कहना है कि घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन उसका मानना है कि संभवतः गैस के कारण विस्फोट हुआ है। मॉल में काम करने वाली एक कर्मचारी का कहना है कि कर्मचारियों को समूहों में इमारत के अंदर जाकर कारों और घरों की चाबियां लाने की अनुमति दी गई थी। उसने बताया कि इमारत से बाहर निकलने के लगभग 2 मिनट बाद ही धमाका हुआ। उसने एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और देखा कि राख जैसी कुछ चीज उसकी ओर आ रही है। अधिकारियों के अनुसार यात्सुशिरो शहर में निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज के एक कारखाने की चिमनी गिरने से 11 लोग फंस गए थे। सभी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक 374 राहत केंद्रों में 9,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। जापान तटरक्षक बल का कश्ती जहाज इमारी मंगलवार के भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कुमामोतो प्रिफेक्चर के उकी शहर में मिसुमी बंदरगाह पर जल वितरण और अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक जहाज पर नहाने की निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। जहाज पर पावर आउटलेट भी उपलब्ध हैं, ताकि लोग अपने स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को चार्ज कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि जापान तटरक्षक बल का एक अन्य कश्ती पोत यात्सुशिरो बंदरगाह पर आत्मरक्षा बल के पानी के ट्रकों को जलापूर्ति कर रहा है। सूत्रों के अनुसार जापानी अधिकारियों ने येन को मजबूत करने के इरादे से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले येन में तेज वृद्धि देखी गई और येन कुछ समय के लिए 157 के स्तर तक पहुंच गया। जापान की मुद्रा में लगभग 5 येन का उछाल देखा गया और ये करीब 2.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हाल में येन लगभग 40 वर्षों के निचले स्तर पर बना हुआ था। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क पर कहा कि अमरीका का मानना है कि येन में अत्यधिक उतार चढ़ाव सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उनके अनुसार येन का मूल्य बहुत कम करके आंका जा रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके एक विध्वंसक पोत ने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, जो देश का पहला है। ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब जापान अपनी रक्षा क्षमता तेजी से मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ये परीक्षण जापान समयानुसार बुधवार को प्रशांत महासागर में हुआ। इस परीक्षण से ये पुष्टि हुई है कि समुद्री आत्मरक्षा बल का विध्वंसक पोत चोकाई टोमाहॉक मिसाइलें दाग सकता है। ईजिस मिसाइलों से लैस इस पोत ने मार्च तक टोमाहॉक मिसाइल का प्रक्षेपण करने की क्षमता हासिल कर ली थी। ये सितंबर के आसपास दक्षिण पश्चिमी जापान के सासेबो बंदरगाह पर लौटेगा। मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका निर्मित टोमाहॉक मिसाइलें जापान की जवाबी हमले करने की क्षमता का हिस्सा हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 1600 किलोमीटर है। मंत्रालय मार्च 2028 तक करीब 169.4 अरब येन यानी लगभग 1.04 अरब डॉलर की लागत से ऐसी करीब 400 मिसाइलें खरीदना चाहता है। मंत्रालय संभवतः ईजिस से लैस 7 अन्य जहाजों को टोमाहॉक मिसाइलों का प्रक्षेपण करने योग्य बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इस्लामिक गुट हमास गाजा पट्टी में निरस्त्रीकरण पर सहमत हो गया है। ये समझौता गाजा में अंतरिम प्रशासन की देखरेख के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस के साथ किया गया है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर बताया, आज बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और गाजा में मौजूद अन्य सभी सशस्त्र गुटों के पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। बीबीसी ने भी हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से शुक्रवार को बताया कि गुट ने गाजा में पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए बोर्ड ऑफ पीस की योजना पर सहमति व्यक्त की है और जल्द ही एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। खबर में ये भी कहा गया है कि इसराइल ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर हमास का निरस्त्रीकरण हो जाता है और इजरायली सेनाएं गाजा पट्टी से हट जाती हैं, तो फिलिस्तीनी क्षेत्र की शांति प्रक्रिया में बड़ी प्रगति होने की उम्मीद है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्षेत्रीय चुनावों के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्थानीय विधानसभा के लिए सोमवार को हुए मतदान के बाद हिंसा की खबरें मिली हैं। खबर के अनुसार चुनावी सुधारों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की एक कस्बे के आसपास सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई। वहां की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है क्योंकि प्रशासन ने स्थानीय इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। लेकिन रॉयटर्स ने एक प्रदर्शनकारी गुट के हवाले से बताया है कि मृतकों की संख्या 30 से अधिक है। इस बीच स्थानीय मीडिया ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि सुरक्षा कर्मियों में से एक की मौत हो गई है। चुनावी सुधारों और स्थानीय राजनेताओं को प्राप्त विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रहे इस प्रदर्शनकारी गुट को पिछले महीने अवैध घोषित कर दिया गया था। पिछले महीने सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में भी जानमाल का नुकसान हुआ था। क्षेत्र के अन्य जिलों में अगस्त में आगे भी मतदान होगा, जिससे और झड़पें होने की आशंका बढ़ गई है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 22वें पाठ में सीखेंगे साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देना।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया और जापानी छात्र काइतो के साथ होक्काइदो में घूम रही है।
0: आज तीनों सापोरो हिमोत्सव देखने आए हैं। उनके सामने बर्फ से एक किले की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। बहुत सारे लोग ये उत्सव देखने के लिए आए हुए हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 22वें पाठ की बातचीत।
2: सुगोई ताम 見て。
3: 大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: किले की हिम प्रतिमा के सामने पहुंचकर मिया ने उत्सुकता से कहा,
2: सुगोई।
1: अरे वाह।
2: ताम, मीते मीते।
1: ताम, देखो।
0: ताम भी शिल्पकला देखकर बहुत प्रभावित हो गई। उसने कहा,
3: ओकी देसने।
1: वाह, बड़ी है ना।
3: हजिमेते मिमास्ता।
1: पहली बार देख रही हूँ।
0: उसके बाद काइतो ने उस किले की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, कैसे बनाई होगी।
1: फिर ताम ने कहा,
3: किरे देसने।
1: सुंदर है ना।
3: मीना दे शशिन ओ तोरिमाशो।
1: साथ में फोटो खींचते हैं।
0: तब मिया ने कहा,
2: ई ने।
1: ठीक है।
0: सापोरो हिमोत्सव का आयोजन हर वर्ष फरवरी में होता है। इसमें बर्फ से बनी लगभग 200 प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। कुछ की ऊंचाई तो 15 मीटर तक भी होती है। इतनी बड़ी प्रतिमाएं बनाना आसान नहीं होता होगा।
1: शिल्पकार मचान बनाकर और क्रेन का इस्तेमाल करके बर्फ का ढेर लगाते हैं। उसके बाद में बर्फ को खुरच कर प्रतिमाएं तैयार करते हैं। काम पूरा करने में कई महीने लग जाते हैं और मूर्तियां होती हैं एक से बढ़कर एक।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: शशिन ओ तोरिमाशो,
0: यानी फोटो खींचते हैं। ये वाक्य सीखकर आप किसी को साथ में कुछ करने का सुझाव दे सकते हैं।
1: इस वाक्य में
4: शशिन
1: का मतलब है फोटो और
4: शशिन ओ तोरिमाशो
1: का अर्थ है फोटो खींचते हैं।
0: यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी को साथ मिलकर कुछ करने का सुझाव देते समय क्रिया के मास रूप में से
4: मस
0: हटाकर
4: माशो
0: जोड़ते हैं।
4: शशिन ओ तोरिमाशो
1: में क्रिया है
4: तोरु।
1: यहाँ इस क्रिया का अर्थ है फोटो खींचना। इसका मास रूप है
4: तोरिमास
1: और उससे बना है
4: तोरिमाशो।
0: तो वाक्य फिर से सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: शशिन ओ तोरिमाशो। शशिन

0: 取りましょう。
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक औरत अपनी सहेली को किसी दुकान में साथ चलने को कह रही है।
2: この店に入りましょう。
3: いいですね。
4: पहले एक औरत ने कहा,
2: この店に入りましょう。
1: इस दुकान में चलते हैं।
0: この店
4: का अर्थ है ये दुकान और उसके बाद लगा है कारक नी, जो उस स्थान के बाद में लगता है जहाँ जाना है। उसके बाद आई है क्रिया
0: हाइरु,
4: यानी अंदर जाना।
0: हाइरु
1: का मास रूप है
0: हाइरिमास,
1: जिससे बना है
0: हाइरिमाशो।
4: जवाब में दूसरी औरत ने कहा,
3: いいですね,
1: ठीक है।
4: ये सुझाव मानने का तरीका है। शायद आपको याद होगा,
0: いい
4: का मतलब है अच्छा या ठीक।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
0: हाइरिमाशो, कोनो मिसे नी हाइरिमाशो।
4: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सापोरो का घंटा घर देखने जाना चाहते हैं, जो शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। आप अपने दोस्त से कहना चाहते हैं, घंटा घर देखने चलते हैं। ये वाक्य आप जापानी भाषा में कैसे बोलेंगे?
1: घंटा घर का जापानी शब्द है
0: tokedai,
1: और जाना के लिए क्रिया है
0: iku,
1: जिसका मास रूप है
0: ikimasu।
4: तो वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए।
5: tokedai ni ikimashou, tokedai ni ikimashou।
4: अब मान लीजिए कि आप बहुत देर चलकर थक गए हैं और कहना चाहते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। थोड़ा को जापानी भाषा में कहते हैं
0: चोट्टो।
4: आराम करना के लिए क्रिया है
0: यासुमु,
4: जिसका मास रूप है
0: यासुमिमास।
4: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: चोट्टो यासुमिमाशो, ちょっと休みましょう。
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: すごい,
0: すごい
4: का अर्थ है अरे वाह। कुछ देखकर हैरान, प्रभावित या भावुक होने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
0: すごい।
4: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: すごい! ダム, 見て見て!
6: ああ, 大きいですね! 初めて見ました!
7: どうやって作ったんだろう?
6: 綺麗ですね! みんなで写真を撮りましょう!
3: いいね!
1: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होक्काइडो के बारे में।
4: होक्काइडो जापान के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित प्रीफेक्चर है। वहाँ दूर दूर तक फैले मैदान हैं, दलदली जमीन है, खूबसूरत झीलें हैं और प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड भी।
1: इस खुले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं। वहाँ की जलवायु देश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। वहाँ वर्षा ऋतु नहीं है और गर्मियों में भी मौसम सुहावना रहता है। ये भी इस प्रीफेक्चर की लोकप्रियता के कारण है।
4: होक्काइडो में फुरानो के लैवेंडर फूलों के बाग बहुत प्रसिद्ध है। जुलाई में वहाँ की पहाड़ियों पर दूर दूर तक लैवेंडर के बैंगनी सा कालीन बिछ जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है।
1: इसके अलावा वहाँ यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल शिरेतोको में गिलहरियाँ, लोमड़ियाँ और अन्य बहुत सारे जीव जंतु मजे से घूमते

0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। अब आज की बाकी खबरें। जापान की वजारत दिफा का कहना है कि इसके एक तबाहकुन बहरी जहाज ने मुल्क में पहली बार टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के लाइव टेस्ट का तजर्बा किया है। ये संगे मील एक ऐसे वक्त में उबूर हुआ है जब टोक्यो अपनी दिफाई सलाहियतों को तेजी से मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वजारत ने कहा कि ये तजर्बा जापान के वक्त के मुताबिक बुध को बहरुल काहिल में किया गया, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि बहरी सेल्फ डिफेंस फोर्स के तबाहकुन बहरी जहाज चोकाई से टोमाहॉक मिसाइल दागा जा सकता है। एजिस से लैस जहाज ने मार्च तक टोमाहॉक लॉन्चिंग की सलाहियत हासिल कर ली थी। इसे सितंबर के आसपास जुनूब मगरबी जापान में सासेबो की बंदरगाह पर वापस जाना है। वजारत का कहना है कि अमरीकी साख्ता टोमाहॉक जापान की जवाबी हमले की सलाहियतों का हिस्सा है। इन मिसाइलों की रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर है। वजारत मार्च 2028 तक ऐसे 400 तक मिसाइल तकरीबन 169.4 बिलियन येन या लगभग 1.04 बिलियन डॉलर में खरीदने का इरादा रखती है। वजारत के साथ दीगर एजिस से लैस बहरी जहाज़ों को भी टोमाहॉक दागने की सलाहियत का हामिल बनाए जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा की पट्टी में इस्लामी ग्रुप हमास ने गैर मुसल्ला होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये माहिदा बोर्ड ऑफ पीस के साथ किया गया, जो गाज़ा में अबूरी इंतज़ामिया की निगरानी के लिए कायम शुदा बैनुल अक्वामी तंजीम है। ट्रंप ने जुमेरात को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज बोर्ड ऑफ पीस ने गाज़ा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह ग्रुपों को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के लिए एक तारीखी मुआहदा किया है। बरतानवी पब्लिक ब्रॉडकास्टर BBC ने भी जुमे को खबर दी है कि हमास के एक सीनियर एहलकार की जानिब से बताया गया है कि इस ग्रुप ने गाज़ा में मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह होने के बोर्ड ऑफ पीस के मंसूबे से इत्तेफाक किया है और ये कि इसका एक बाज़ाब्ता बयान जल्द ही जारी किया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि इसराइल ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। अगर हमास गैर मुसल्लह हो जाए और इसराइली अफवाज इस पट्टी से वापस चली जाएं, तो फ़लस्तीनी इलाकों के अमन अमल में बड़ी पेशरफ्त मतवक्को है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स का कहना है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इलाकाई इंतखाबात के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक झड़पें मकामी कानून साज असम्बली के लिए पीर को मुनक़िदा वोटिंग के बाद हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबी असलाहत का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन की एक कस्बे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़प हुई। वहां की सूरत हाल की तफसीलात अभी तक नामालूम हैं क्योंकि हुक्काम ने मकामी इंटरनेट सर्विस मुनक़ता कर दी है, लेकिन रॉयटर्स ने एक एहतजाजी ग्रुप का हवाला देते हुए बताया कि इस बार हलाकतों की तादाद 30 से ज़्यादा है। दरियसना मकामी मीडिया ने सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से कहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों का एक रुकन हलाक हो गया। इंतखाबी असलाहत और मकामी सियासतदानों की मराहत के खात्मे का मुतालबा करने वाले इस एहतजाजी ग्रुप को गुज़िश्ता माह गैरकानूनी तंजीम करार दिया गया था। गुज़िश्ता माह भी इस ग्रुप की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प जानलेवा साबित हुई थी। खित्ते के दीगर अजला में अगस्त में पोलिंग के मजीद मराहल होने वाले हैं, जिससे मजीद झड़पों के खदशात बढ़ रहे हैं।
1: आखिर में आम खबरों का खुलासा। कुमामोतो में जलजिले के बाद हलाकतों की तादाद 35 हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक जापानी हुकाम ने येन को सहारा देने के लिए ज़रे मुबादला मंडी में मदाखलत की है और इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।